0: यो त
1: दरै रिसाइसन
2: खोलेनन् खै।
1: खै यति
2: करलाउँदैन, नगाउने के हो गठे?
3: हे के भनौँ खै,